Hinda nasagi ni den den ni pat jawa tela te ni jenze ni ri lang hi bikas la ani nga ma jun jenze te shima jun ri tani lang sa ka tani khung ri da kanan lang sa ni jenze ni no ma lang ba de ni ri kan ni lang bi ko khung te nasagi ni se andi sa wa shi de ni ri jenze ni ri lang hi bikas de ni de da ma jan na koran chang ba ka thong ni de da ni se ka de sa bu ji me ba res waiter te ani mechi ji ga tama ga par de jarni ji ja ten sa shi pa ke pe ji zo ta shi de ni tama la jarni tama la jeni ngar so ten sa ten ba de pe na ndo no da ga gege no ndo no da ga gege no hi bi ga sa la na na ro no te chish ang ga zo la de ge chero wa de ni le shi tang ga na na ro no se an de ko ran chang ba ga thoni ji ja ten sa bo ga ga yo me ba no se an de ji ten sa ji yo ma मेरे ते वेजा दाग गेगेन नो हिबे गेगेन से अतल या जरवा इना तजिन थाल जवा इना नो हिबा ग जाते के निबा क ओ अने कबज को जेज ग जुजा ते अने छरसो आ ना जोसो तक तें दे चले जना नोडन ग अने सावशी ते करेस दा अंदर दाग गेगेन नो से दिस अने कबज जुजा ता छरसो ना नो हिबा ते जो पी तें सावशी कर तें दे इंदले ता कोंद हिबा ओ मिसी जी ग तमा ग थोंदा पास जिरि जे जरना तें ही कोर्स आशी तें करेस ते ता माजन ना अनि रंगिनी रंजा फेविगोनी अनि तेसो बकाय ते मनिबार ता तेदा बिजिला दीकासले छठेस ता तंदे इनन दीकासले गांजो तोबाजी गांगोरे से दिलो वने पे चाया ना गांजो नासिगे नी ता योना मा ता मानरो मो ता तने ला ला सो बा तने मबोची अनि छेग नोला या दु अनि तेसो गचेर जना छनछन को मिया छानो को तेदिले मिना छेनिन गग मारलेस मंगा मारलेस तने गारो सो तोबाजी मोरे ta tar tso chiya chiri se di la kato kato la tani ngaru su hiye jik zonra buji rindu pe na kondi ngaru su peji gyaba nrenze ni nri lang se a dedang nrenze ni chi gang hi ba peji teni chi doa ye na ane sibu ya bar chenre re se di la pe na nrenze ni nri lang hi pi ka se la nrenze ta nri ni jo bar ke na se ke ni te ane tre chang bar korang ke chiri se di la koro chang ba ke ten kong ma ten bar विदा नासा की नीति तनी जो परु जावा तेला तेनी अनरि लांसा का खुंते अनजनजे ने बा तो सावते वेजा अनजनजे नीचि गंग हिबिकासला अनजनजे नीचि गंग हिबिकासला काया दा चाक को चोसे की चीते नासा की नीले जायो पर दी काजे नासा की नी से ने छे मारे दी काजे नासा की नी चिरसना ने मिंग चा दियो जोदा नी दा सेमा लासो कर ना सो नीस हिंकान ल तजु की नीस तेंद्र अनजनजे नीचि गंग हिबिकासला नासा की नीते छे माय तचेरे न मिंजाई बा जंजे नी ड्री लंग हिबी कासे नासे के नीते नी माई बा न ठेचा माची देव कासला को इजु के छाने जदांग के छाने कि येन देना या आ वेन जचेरे को कतो कतो जे नी आ केशा के जोआ का नोना अनि नाने ना बोते अनि मडा खाका सोसो छाम बोते जे देव दिसले नासे के नी दा बोते आ अनि जुंगु जे छेया इ नासे के नी दा बोते आ अनि डोनी सेंसन लासो बोते नी ते जे मियां इ सेना अनि गर्छ छ तँ जिगो मा त कतो कतो जि केशा कि जवाग न न त दाछ त तिम ति चाहि छन कोन हे बतेरे छे हे न कोरा चाम बा तो नि ते मते बास मेज मि न अनि रंग इन को जिजा के तें कान र वा कि तें गु आ तें जु मो जम जे बाते मि के छेनि र वा वा तिम ति सल ते चले जन न सो छे जु कोर ल ते जु कोदेन र बते कान रे जे मा त ते ता ब ग छे ते ला केशा ल तु ना तु ना छे ते ल रि नि यो बा रेस वा छे ते जि यास त ये न कान रे से दि ल jinju la tini jorgi pika che yawan chin tene nipa ji chere zina jinju la mutu pika che rawan chin yin se tene tere che yawan chin yin da che rawan chin yin se tene niku khonsu ane nganso pe kanjian pa nga kohi chin pika che teso de ane dutu pika tene che yawan chin yin da rawan chin yin se ane dike yawan se dile tene tabo ke che te ane ranyuk tene kanjian chi yat zina kore yat chode pa mayin pa को निपर द छेते छे कांदा कांजेते चाई छानी जेसाक ने जी इगे त जी मिंत जी जिंजुला तिनी को इजर की बा मातो अने राम मे दे देता ब छेते ला छे यां जी से छे राम जी से दिल कोरोना जेसाक मिंग मा त जी जिंजुला तु म गे पर कां दे दे जी ने कोरो जछु पा पेला छे राम जी से गेन दे ल छे यां जी द राम जी के छे पर सो ते अने को यार जी मिंग मा त जी जिंजुला तु गे दा म गे तक छे पर ता तें जे इन दिल अने ngangzu zawa sunju ba gong nong la ta jinju la tibi chi yangwa ji na jinju la mutibi chi rangwa ji da ma su yung di la